0: अनमोल विचार।
1: आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग आप अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं, अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। आप निराश क्यों हो जाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि निराश होने के बाद तो सफलता के लिए कोई सीढ़ी शेष नहीं रह जाती। हाँ, यदि आप में आशा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सब कुछ पा सकते हैं। आप उम्मीद का दामन ना छोड़िए, उम्मीद की एक किरण के सहारे तो आप ऐसे ऐसे बड़े कार्य कर सकते हैं जिनके बारे में निराशावादी लोग सोच भी नहीं सकते।
0: ये था अनमोल विचार और अब श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। आगाज कर रहे हैं मातृवंदना के साथ।

श्रोताओं, अभी आप पीयूषा कैलाश और अनुज की आवाजों में ये रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं रायदास की लिखी रचना। गायक कलाकार हैं अपर्णा मयंकर और गोपाल सिंह।

0: कर्णिका बनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये शिव विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: हमारे द्वीपों की जलवायु शरीर पर पाए जाने वाले परजीवियों के लिए एक आदर्श वातावरण है। इन परजीवियों का संवर्धन गर्म तथा नम जलवायु में सतत होता रहता है। मुर्गी पालन में यदि रखरखाव में थोड़ी सी गलती हुई तो ये समस्या गंभीर बन जाती है। हमारे द्वीपों के मुर्गी पालक भाई इन परजीवियों की गंभीर समस्या से पूर्ण

रूप से परिचित हैं तथा अंडा उत्पादन में होने वाली गंभीर गिरावट से भी परिचित होंगे। द्वीपों में मुख्य समस्या किलनी तथा जुओं की है, जहां ये मुर्गियों के शरीर पर सीधे प्रभाव डालती हैं, वहीं बीमारी संचरण में भी सहायक होते हैं। आर्थिक दृष्टि से किलनियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण परजीवी हैं। यद्यपि संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु अंडे दे रही मुर्गियों में ये गंभीर प्रभाव उत्पन्न करती हैं। द्वीपों में सूखे के मौसम में ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। किलनियों के निम्फ या छोटे जो बच्चे होते हैं, वो मुर्गियों की पंखों की जड़ों पर चिपक कर त्वचा से रस चूसते रहते हैं। इस अवस्था में कभी कभी ये पहचान में भी नहीं आ पाते। बड़े होकर इनकी संख्या प्रति मुर्गी 200 से भी ऊपर जा सकती है। शरीर से उतरकर ये बिछावन या लिटर या फिर दीवारों पर भी चढ़ सकती हैं। ये रक्त चूसकर जहां मुर्गियों में रक्त की कमी पैदा करती हैं, वहीं हमेशा खुजलाहट होने से मुर्गी दाना पानी लेना भी कम कर देती है। परिणाम ये होता है कि बेचैनी, भूख की कमी, रक्त की कमी, सुस्ती, अंडे उत्पादन में गिरावट, चोंच को जमीन में

0: से भी ऊपर जा सकती है। शरीर से उतरकर ये बिछावन या लिटर या फिर दीवारों पर भी चढ़ सकती हैं। ये रक्त चूसकर जहां मुर्गियों में रक्त की कमी पैदा करती हैं, वहीं हमेशा खुजलाहट होने से मुर्गी दाना पानी लेना भी कम कर देती है। परिणाम ये होता है कि बेचैनी, भूख की कमी, रक्त की कमी, सुस्ती, अंडे उत्पादन में गिरावट, चोंच को जमीन में गाड़ना आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी तो अंडा उत्पादन 65 से 70% से गिरकर 10 से 15% तक आ जाता है, जो कि उपचार के 10 से 20 दिन बाद फिर से सामान्य हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाने से मुर्गियों में अन्य संक्रमण भी आसानी से हो सकता है। सामान्यतः किलनियों से मृत्यु दर कम है, परंतु संक्रमण बढ़ जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। स्पाइरोकिटोसिस इनसे फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। किलनियों की ही तरह जुएं भी मुर्गियों के शरीर पर खुजलाहट पैदा करते हैं और इस तरह मुर्गियां बेचैन रहने लगती हैं, दाना पानी कम लेती हैं और मुर्गियों में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे अंडा उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाइयों, इनके नियंत्रण के लिए दो तरफा उपाय करने चाहिए। मुर्गी घर के चारों तरफ घास व झाड़ को काटकर जला दें, इससे गड्ढों आदि में छिपे परजीवी मर जाते हैं। सभी मुर्गियों को मेलाथियन या साइथियन के 0.05% के घोल में नहला देना चाहिए। नहलाते समय एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुर्गियों को पूरी तरह से घोल में ना डुबाएं, मुंह को बचाकर ही मुर्गियों को घोल में डुबाएं। एक दिन बाद फिर सब मुर्गियों को ऐसे ही कीटनाशक के घोल में नहला दें। इस तरह से मुर्गियों के शरीर पर मौजूद परजीवी नष्ट हो जाते हैं। मुर्गी घर में मौजूद परजीवियों को मारने के लिए लिटर पर यानी बिछावन पर चूना अच्छी तरह से एक दिन के अंतराल पर 2 बार बिछा दें। चूना दीवालों पर, विशेषतः दरारों, कोनों, गड्ढों आदि जगह पर भी छिड़कना चाहिए। नई भूसी डालने से पहले फर्श को अमोनिया, फिनाइल या फॉर्मलिन से अच्छी तरह से कीटाणु रहित कर लें। भूसी में भी चूना पूरी तरह से मिलाएं। इन उपायों से दीमक का प्रकोप भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, हमारे द्वीपों की जलवायु में हर तीसरे महीने डिपिंग या उपचार करने से मुर्गियों को परजीवियों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। भूसी को कभी भी गीला ना होने दें। यदि बिछावन या भूसी गीली नजर आए तो सूखी भूसी ऊपर से डाल दें। समय समय पर बिछावन को बदलते भी रहें। इस तरह किसान भाइयों, अगर हम इन बातों पर ध्यान दें तो मुर्गियों में बाह्य परजीवियों से होने वाले नुकसान को रोककर अंडा उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृतियों और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले के भी

को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान 17 सितंबर को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान के लिए 15 सितंबर को सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी उसी रोज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए 16 सितंबर को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान दूसरे दिन शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरीसा कचाल वनानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए 24 सितंबर को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 27 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर नालंदा जहाज 15 सितंबर को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 17 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जलयान के इन्हीं स्थानों के लिए आगामी यात्राएं 22 और 29 सितंबर को श्री विजयपुरम से होंगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप दोपहर 1 बजे और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 30 मिनट पर श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 मिनट पर श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 मिनट पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 मिनट पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल सवेरे 8 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कचाल कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए वापस लौटेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार, सुप्रभात। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे श्रोताओं, संगीत की दुनिया में एक शब्द है धुन, और जब ये धुन बजती है तो कानों से होती हुई सीधे दिल तक पहुंच जाती है, होंठों पर मुस्कान बनकर ठहर सी जाती है, आँखों में बीते दिनों की यादों को जगा जाती है और मन को एक अनोखा सा सुकून दे जाती है। धुन कभी किसी गीत की पहचान बनती है तो कभी किसी शख्सियत के जिंदगी की। कभी कोई मधुर धुन हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है तो कभी कोई धुन बरसों पुरानी यादों के दरवाजे खोल देती है।

पहुंचने की धुन, हर धुन की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी महक और अपना अपना अलग ही मज़ा है, और ये धुनें हमारी जिंदगी को दिशा देती है।

धुन का रिश्ता केवल संगीत से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और हमारी जिंदगी से भी जुड़ी होती है। जैसे खुशी की धुन, प्यार की धुन, सपनों की धुन तो कभी मंजिल तक

0: धरती को एक मधुर संगीत सा एहसास कराती वो बरसात की धुन, बच्चों को सुकून भरी नींद की गोद में पहुंचाती वो माँ की लोरी की धुन, ढेर सारे हंसी मजाक और शरारतों से भरी वो दोस्तों की बातों की धुन, और घर को खुशियों से भरने वाली बच्चों की वो खिलखिलाहटों की धुन। इसी तरह न जाने धुनों के कितने ही रूप हैं जो जिंदगी की कहानी को खूबसूरत बनाती है। हम सबके जीवन में खुशहाली की धुनें हमेशा बजती रहे, इसी दुआ के साथ चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, आज सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर कलाकार होंगे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। बाल जगत कार्यक्रम का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आप सुन पाएंगे सवेरे 10:00।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 360वीं कड़ी।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी श्री राम के राज्याभिषेक की कथा सुना रहे हैं। काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़, श्री राम के राज्याभिषेक की ये पावन कथा दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाती है।

श्रोताओं, अभी आप महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में रामचरितमानस गान की 360वीं कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 और 38 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत चंद देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। उससे पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों में वर्षा नहीं हुई। जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अनेक भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 सुनिए जनसूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देशरागनी। वहीं इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूली बिसरी गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। 8:30 पर

कम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। सवेरे 9 बजे बाल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत दूरदर्शन व ओजोन दिवस पर चर्चा, हिंदी दिवस पर वार्ता तथा लोकतंत्र दिवस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सवेरे 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप उल्लास काशलकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे सुनिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन। चंद गजलों का लुत्फ लीजिए, दिन के 11 बजे फनकार होंगे चंदन दास और हरिहरन। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में लघु नाटक के अतिरिक्त हिंदी दिवस पर चर्चा की जाएगी। मलयालम कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर पुराने फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, चित्रा सिंह, उस्ताद सुल्तान खान और जगजीत सिंह। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार। दोपहर बाद 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत 2:30 पर सुनिए गीत लहरी। दोपहर 3 बजे एल्बम टाइम और 3:30 पर आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा भक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 4:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 5 बजे पुराने फिल्मी गीतों के अलावा सुरक्षा बीमा योजना पर चर्चा की जाएगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में रेडियो नाटक प्रसारित किया जाएगा। शाम 6 बजे दिल्ली से प्रसारित सुर्खियों में कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। शाम 6:35 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप कश्मीरी लोकगीत सुनेंगे। चंदे देश गान प्रसारित किया जाएगा शाम 6:45 पर। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। दिल ने फिर याद किया, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है संध्या 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के अंतर्गत फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो म्यूजिक लवर। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:30 पर अंग्रेजी में रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम तथा रात 10 बजे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुमित सिंह का सितार वादन सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से मौसम की जानकारी व आज दिनभर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन में 11:40 पर।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: श्रोताओं, आज सवेरे 10 बजे लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फरमाइश। सवेरे 9 बजे आप सुनेंगे बाल जगत कार्यक्रम। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और उसके आसपास के इलाकों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:22। एयर इंडिया

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद

मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत मायबंदर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा 25 और 26 सितंबर को स्टेट ओपन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 अपना लिया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद, परामर्श और कूटनीति प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संगठन के नेताओं ने पश्चिम एशिया में

बढ़ते तनाव पर भी चिंता व्यक्त की और अधिकतम संयम बरतने तथा स्थिति और बिगड़ने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने का आह्वान किया। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। आज के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2026 के आयोजन के अंतर्गत मध्योत्तर अंडमान उपायुक्त कार्यालय मायबंदर में वृक्षारोपण, औषधीय पौधे लगाने के अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त सुशांत पाधा तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्णा चैतन्य ने औषधीय पौधे लगाए। इस कार्यक्रम का संचालन GDMO आयुर्वेद और चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका इकबाल तथा ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. एम सुधि और मायाबंदर के डॉ. RP अस्पताल की टीम के सहयोग से किया गया। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेदिक औषधीय पौधों, उनके पारंपरिक उपयोग एवं स्वास्थ्य लाभों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके संरक्षण और खेती के महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम में आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने में औषधीय पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, हिंदी पखवाड़ा और साइकिलिंग चैन ट्रायल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रशासन और केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कई विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। पूरे पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के राजभाषा संबंधी विचार प्रकाशित किए जाएंगे। इस दौरान स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निबंध, भाषण और स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण, टिप्पण, आलेखन जैसी प्रतियोगिताएं और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित हिंदी सप्ताह के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 16 सितंबर को शाम 6 बजे परिषद के परिसर में आयोजित होगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को पर्यटन को नया रूप देने में डिजिटल तकनीक और AI की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर चाथम सॉमिल, समुद्रिका संग्रहालय, मानव विज्ञान संग्रहालय, मत्स्य संग्रहालय और सेल्युलर जेल संग्रहालय पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। इन सभी स्थानों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा 25 और 26 सितंबर को श्री विजयपुरम में स्टेट ओपन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इस चयन ट्रायल के माध्यम से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप

चैंपियनशिप के लिए वेब समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले साइक्लिस्टों का चयन किया जाएगा। इच्छुक साइक्लिस्ट NSRS पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के साथ निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव से संपर्क किया जा सकता है। उप शिक्षा कार्यालय दक्षिण अंडमान की ओर से 15 से 22 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय के सभागार में अंतर विद्यालय शतरंज, योग और टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। ग्रामीण विकास पंचायतीराज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत पात्र ग्रामीण युवाओं को मुफ्त आवासीय और रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम युवाओं को व्यवहारिक उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करने और उभरते तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसायों में टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से चुने गए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में 18 से 35 वर्षीय पुरुष और 18 से 45 वर्षीय महिला उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी। यूटी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत अनुबंध के आधार पर ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार 18 सितंबर को सुबह 10 बजे सहायक निदेशक कृषि कार्यालय मायबंदर में लिया जाएगा। विभाग ने उम्मीदवारों से साक्षात्कार में निर्धारित समय पर उपस्थित होने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत मायबंदर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा 25 और 26 सितंबर को स्टेट ओपन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम देशरागनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कदमों में हो रफ्तार, दिल में हो उमंग और चेहरे पर हो मुस्कान, बढ़ते रहने और हर कदम पर खुशियां बांटते रहने का संदेश देता है।

श्रोताओं, सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई और इंसाफ का रास्ता हमें हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है।

श्रोताओं, चिट्ठी सिर्फ एक संदेश नहीं होती, ये दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत जरिया होता है। और जब बात देश की हो तो अलग अलग शहरों और दूर बैठे अपनों के बीच यही भाव हमें एक दूसरे से और वतन से जोड़े रखता है।

श्रोताओं, देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश की एकता, शांति और तरक्की में अपना योगदान दें। देश रागनी कार्यक्रम से अब हम अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 और 52 सेकंड हुए हैं। अब पेश है हमारा अगला कार्यक्रम

कार्यक्रम का आगाज अनमोल सुविचार के साथ। श्रोताओं, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। श्रोताओं, रिश्तों की भीड़ में दादा दादी और नाना नानी वो रिश्ते हैं जिनके पास हमारे बचपन की हंसी और हमारी जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं भी हैं। श्रोताओं, आज हम नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं, जो कि हर साल 13 सितंबर रविवार को मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन का उद्देश्य दादा दादी और नाना नानी समेत ग्रैंड पेरेंट्स के योगदान, अनुभव और परिवार में उनकी भूमिका का सम्मान करना है। 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और 1969 में इसका वार्षिक आयोजन शुरू हुआ। श्रोताओं, दादा दादी नाना नानी परिवार की ऐसी कड़ी होते हैं जिनसे सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि परिवार की यादें, बच्चों के लिए उनके साथ बिताया समय अक्सर जिंदगी की खूबसूरत यादों में शामिल हो जाता है। इसी खास रिश्ते और बुजुर्गों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: इस दुर्गा पूजा को मनाइए गोइंकास के साथ।
2: मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर और साड़ियों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन
1: गोइंकास के एबरडीन बाजार, भातुबस्ती, बम्बू फ्लैट और डिगलीपुर शोरूम में आइए और आकर्षक ऑफर्स पाइए।
2: जीन्स केवल 499 रुपए से शुरू,
1: शर्ट 490 रुपए,
2: क्रॉप टॉप और टी शर्ट 199 रुपए
1: और कुर्ती सिर्फ 190 रुपए से शुरू।
2: सूट पीसेस, वेस्टर्न टॉप्स, कढ़ाईदार कुर्ती,
1: रेडीमेड सूट, ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट के नए कलेक्शन के लिए
2: अपने पूरे परिवार के साथ आइए गोइंकास।
0: श्रोताओं, कभी कभी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हमारी ज़िंदगी बदलने में हमें मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, इसीलिए हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है सकारात्मक सोच दिवस, जो हमें आशावादी बनने और जीवन के उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। ये दिन हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर पॉजिटिव मानसिकता के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। श्रोताओं, इसीलिए पॉजिटिव सोचे सब अच्छा होगा।

0: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
3: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हम अपने जीवन में कई पालतू पशुओं को पालते हैं और उनसे एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है हमारा, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं बस उनकी खट्टी मीठी यादें हमारे पास रह जाती हैं। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पालतू पशु स्मृति दिवस। हर साल सितंबर के दूसरी रविवार को यह दिवस मनाया जाता है उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए।

श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि हम मोबाइल पर एक क्लिक करते हैं और तुरंत कोई ऐप खुल जाता है, या इंटरनेट पर कोई जानकारी कुछ ही सेकंड में हमारे सामने आ जाती है? इसके पीछे प्रोग्रामर्स की मेहनत और उनकी लिखी हुई कोडिंग की बड़ी भूमिका होती है। आज 13 सितंबर को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स डे, यानी प्रोग्रामर्स को समर्पित दिन। प्रोग्रामर वो लोग हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और कई तरह की डिजिटल तकनीकों को काम करने के लिए कोड लिखते हैं।

श्रोताओं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, किंतु समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनीता कार्यक्रम से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अनुमान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने

0: सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document,
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026.

0: India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता, साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी, 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी, डोडा में जैश आतंक की का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें, हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन वेस्ट एशिया। Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pehelgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
3: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत। गीत लिखा है फैज अनवर ने।

श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। आइए एक बार फिर सुनते हैं उदित नारायण को। इस गाए हुए गीत के रचनाकार हैं

श्रोताओं, अभी आप अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गीत को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल जगत।

देश की धड़कन संस्कृति की पहचान और हम सब की जुबान हिंदी। रेडियो पर प्रसारित होने वाले हमारे बाल जगत कार्यक्रम में आप सभी मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी रीता दीदी, ताकि इस पावन अवसर पर हमारी अपनी राजभाषा हिंदी के गौरव, इतिहास और वर्तमान पर खुल के चर्चा की जा सके। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस केवल एक तारीख नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कार्यक्रम के इस विशेष अंक में हमने हिंदी के सफर को अलग अलग पड़ावों के जरिए पिरोया है। पहले पड़ाव में हम जानेंगे कि कैसे इस भाषा ने सदियों से भारत की विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोकर रखा है, और यह सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी मिट्टी की खुशबू है। मेरे दोस्तों, आधुनिक दौर और सोशल मीडिया के इस बदलते परिवेश में भी हमारी हिंदी लगातार नए आयाम छू रही है, जो यह साबित करता है कि यह भाषा समय के साथ और अधिक समृद्ध होती जा रही है। तो दोस्तों, करते हैं हिंदी की अनोखी बातें आपकी दीपाली दीदी के साथ।

नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी एक कैसे बना हुआ है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि देश विविधताओं के बावजूद एकता के सूत्र में कैसे बंधा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, उर्दू और ना जाने कितनी भाषाएं और बोलियां हैं। फिर भी जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं तो हमारी पहचान एक हो जाती है। यही तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता। और इस विविधता को एक दूसरे तक पहुंचाने वाली भाषाओं में हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, भावनाओं का सेतु है। बच्चों, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती, बल्कि भाषा हमारे विचारों को शब्द देती है। भाषा हमारे मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और भाषा हमें एक दूसरे को समझने का अवसर देती है। जब कोई बच्चा अपने मित्र से कहता है तुम कैसे हो और सामने से उत्तर आता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो केवल दो वाक्यों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि दो मन एक दूसरे से जुड़ते हैं। यही भाषा की शक्ति है। हिंदी भी भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली एक भाषा है। यह केवल हिंदी भाषा बोलने वाले प्रदेशों की भाषा नहीं है, बल्कि यह देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को एक दूसरे के साथ में संवाद स्थापित करने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। आप स्वयं इसका उदाहरण है। आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बाजार हो, विश्वविद्यालय हो, पर्यटन स्थल हो या किसी दूसरे राज्य में, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हिंदी में आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यानी हिंदी हमें एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता देती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। प्यारे बच्चों, एकता का यह नहीं कि हम सब एक जैसा बोलें, एक जैसा पहने या एक जैसा सोचें। एकता का अर्थ तो यह है कि हम विविधताओं के बीच एक दूसरे का सम्मान करें। हमारी भाषाएं हमारी पहचान है। जैसे तमिल अपने आप में सुंदर है, बंगाली अपने आप में मधुर है, इसी प्रकार कई भाषाएं अपनी अपनी जगह अनमोल है। लेकिन हिंदी का महत्व दूसरी भारतीय भाषाओं को छोटा करना नहीं है, बल्कि हिंदी की खूबसूरती तो यह है कि उसने समय समय पर दूसरी भारतीय भाषाओं और बोलियों से शब्द ग्रहण किए हैं। इसलिए हमें कहना चाहिए, भाषाएं अनेक हो, भाषाओं का सम्मान हो, राष्ट्र का सम्मान हो। हिंदी सभी के हृदय को एक दूसरे के साथ में जोड़ती है। प्यारे बच्चों, हिंदी की सबसे बड़ी ताकत केवल उसके शब्द नहीं है, बल्कि सरलता, सहजता, अपनापन और उसकी सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे को जोड़ कर रखना। जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो उसमें सम्मान होता है। अगर हम किसी को कहते हैं आप कैसे हैं, तो उसमें अपनापन होता है। जब हम कहते हैं आइए साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना होती है। और जब हम कहते हैं हम सब भारतवासी हैं, तो उसमें राष्ट्रीय एकता का भाव होता है। इसलिए हिंदी को केवल किताब के विषय के रूप में ना देखें, बल्कि अपने जीवन से जोड़ें। हिंदी में बोलिए, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में सोचिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी के माध्यम से दूसरों से जुड़िए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो आपको अपनी मातृभाषा छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी मातृभाषा से प्रेम कीजिए, अपने घर की भाषा बोलिए, अपने क्षेत्र की लोक भाषा और लोक गीतों को जानिए, क्योंकि हर भाषा अपने साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा और पीढ़ियों की स्मृतियां लेकर चलती हैं। हिंदी को अपनाने का अर्थ दूसरी भाषाओं को भूलना नहीं है, बल्कि अपनी भाषा का सम्मान करते हुए दूसरी भाषाओं का सम्मान करना ही सच्ची भारतीयता है। बच्चों, यदि हम अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो यहाँ तो हमें भारत की विविधताओं का सुंदर रूप देखने को मिलता है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बसे लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं सुनाई देती हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ दिखाई देती हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद हमारे बीच एकता दिखाई देती है। लेकिन ये एकता क्या है जो हम एक दूसरे से जोड़ती है? वह है हमारी हिंदी। हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपने सुख दुख साझा करते हैं, तो एक अपनापन दिखाई देता है। और यह अपनापन कहीं ना कहीं हमें हिंदी भाषा अपनाने से आती है। यही तो है हमारा छोटा भारत। हिंदी ऐसे वातावरण में संपर्क और संवाद का माध्यम बनकर लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न उठता है, हिंदी को राष्ट्र के एकता की डोर मजबूत बनाने में बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चों, आपके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। हिंदी पढ़िए, कहानियां पढ़िए, जीवनियां पढ़िए और बाल साहित्य पढ़िए, क्योंकि पुस्तकें हमारे विचारों की दुनिया को बड़ा कर देती हैं। दूसरा, हिंदी बोलने में संकोच ना करें। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हिंदी बोलना साधारण बात है। नहीं, अपनी भाषा में विचार व्यक्त करना गर्व की बात है। तीसरी बात, दूसरी भाषाएं भी सीखिए। यदि आपको अवसर मिले तो दूसरी भारतीय भाषाओं के कुछ शब्द अवश्य सीखिए। तमिल में नमस्कार कैसे कहते हैं, बंगाली में धन्यवाद कैसे दिया जाता है, तेलुगु में किसी मित्र को कैसे संबोधित किया जाता है। जब हम किसी की भाषा का एक शब्द भी सीखते हैं तो हम उसके दिल के करीब पहुँचते हैं। चौथी बात यह है, भाषा के आधार पे किसी का मजाक ना उड़ाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता तो उसका मजाक मत उड़ाइए। यदि कोई बच्चा किसी दूसरी भाषा में बोलता है तो उसे कम मत समझिए, बल्कि उससे कहिए, तुम मुझे अपनी भाषा का एक शब्द सिखाओ, मैं तुम्हें हिंदी का एक शब्द सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्ती कितनी सुंदर हो जाएगी। हिंदी हमें एकता के सूत्र में बांधने में बहुत सहायक है। बच्चों, कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ी माला है और इस माला में अलग अलग रंग के फूल हैं। कोई फूल लाल है तो कोई फूल पीला, तो कोई फूल सफेद है तो कोई फूल नीला। यदि सारे फूल एक ही रंग के हो तो माला सुंदर नहीं होगी। इसलिए फूलों के माला को सुंदर बनाने में अनेक रंगों के फूल सहायक होते हैं। भारत भी ऐसी ही माला है और हमारी भाषाएं उसके फूल और हमारी संस्कृतियां उसके फूल। इन सबको जब हम एक डोर में जोड़ कर देखते हैं तो यह डोर एकता के सूत्र में बन जाती हैं। संस्कृतियां विविध हैं, त्योहार विविध हैं, परंपराएं बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी विविधताओं के बीच हमारी सूत्रधार हिंदी हमें एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में सहायक है। प्यारे बच्चों, आज भारत बदल रहा है। हमारे बच्चे नए तकनीक सीख रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शिक्षा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में हिंदी की भूमिका भी बदल रही है। आज हिंदी केवल किताबों में नहीं है, बल्कि हिंदी इंटरनेट पर है, हिंदी समाचारों में है, हिंदी फिल्मों में है, हिंदी गीतों में है और अब हिंदी तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदी को आधुनिक बनाइए, हिंदी को तकनीक से जोड़िए और हिंदी को दुनिया तक पहुंचाइए और भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाने में अपना योगदान दीजिए। प्यारे बच्चों, याद रखिए, हिंदी हमें केवल बोलना नहीं सिखाती, बल्कि हमें जोड़ती है। हिंदी हमें केवल शब्द नहीं देती, बल्कि हमें विचार देती है। हिंदी हमें केवल पहचान नहीं देती, बल्कि हमें संस्कृति से जोड़ती है और यही राष्ट्र की एकता की डोर बन जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदी से प्रेम कीजिए, लेकिन दूसरी भारतीय भाषाओं का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी शक्ति है, भारतीय भाषाएं हमारी विरासत हैं और एकता हमारी पहचान है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बातचीत को समाप्त करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। भाषाएं चाहे हो अनेक, दिल में भारत एक रहे। शब्द अलग हो भाव वही, मन में अपना देश रहे। हिंदी बने संवाद की डोर, हर दिल को दिल से जोड़े। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत को भारत से जोड़े। तो आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर भाषा का सम्मान हो, हर संस्कृति का आदर हो और हर भारतीय के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम हो।

नहीं दोस्तों, हिंदी दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि यह देश के कोने कोने को एक सूत्र में पिरोने वाली राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत डोर है। भारत में हजारों बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी ने ऐतिहासिक रूप से संवाद का एक ऐसा पुल बनाया है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। जब हम हिंदी को सम्मान देते हैं तो हम अपनी साझा संस्कृति

0: दोस्तों, आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य है और उनके बीच एकता की भावना जगाने में भाषा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब स्कूल के मंच पर विभिन्न राज्यों के बच्चे हिंदी में कविताएं सुनाते हैं, वाद विवाद करते हैं या नाटक खेलते हैं, तो उनके बीच भाषाई दूरियां मिट जाती है। यह संवाद उन्हें सिखाता है कि भले ही हमारे घर की बोलियां अलग हो, लेकिन विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान हमें एक परिवार के रूप में बांधता है। रेडियो तरंगों के इस सफर में आज हम सबने यह समझा कि भाषा कभी किसी को बांटती नहीं, बल्कि हमेशा जोड़ने का काम करती है। हिंदी हमारी वह साझी पहचान है जो विविधता में एकता के हमारे प्राचीन मंत्र को जीवंत रखती है। आइए आने वाले हिंदी दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का आदर करते हुए देश की एकता और भाईचारे की इस डोर को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: दोस्तों, आपके लिए दूरदर्शन हमेशा से मनोरंजन के साथ साथ सीखने का एक बेहतरीन जरिया रहा है। इस पर प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान से जुड़ी शो और बाल दिवस विशेष प्रस्तुति बच्चों में बौद्धिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। दूरदर्शन ने खेलकूद, कला और देश दुनिया की जानकारी को देश के दूर दराज के गाँवों तक पहुँचाकर बच्चों को एक मजबूत शैक्षणिक मंच प्रदान किया है। बच्चों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धक के लिहाज से दूरदर्शन का इतिहास बेहतर स्वर्णिम रहा है। 80 और 90 के दशक में शक्तिमान, महाभारत, रामायण, मालगुडी डेज, विक्रम और बेताल और जंगल बुक जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक बच्चों के बीच बेहतर लोकप्रिय थे, जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य भी सिखाते थे। इसके अलावा विज्ञान, कला और खेलकूद से जुड़ी

विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से इसने हमेशा बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान समय में दूरदर्शन केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक सेवा प्रसारक बन चुका है। ज्ञान दर्शन जैसे शैक्षणिक चैनलों के जरिए इसने देश के दूर दराज के गांवों तक स्कूली पढ़ाई और ज्ञान की रोशनी पहुंचाई है। आज भले ही तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है और बच्चों के पास इंटरनेट और नए प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूरदर्शन का यह सफर भारतीय संस्कृति, इतिहास और बच्चों के बचपन की एक अमीर और खूबसूरत याद के रूप में हमेशा जीवित।

नहीं दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर बहुत ही शान से रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा लोकतंत्र। हम अपने देश के संविधान का सम्मान करेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने स्कूल व समाज में सबको साथ लेकर चलेंगे। सफर के इस पड़ाव पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है दोस्तों, लेकिन जाते जाते हमारा संदेश यही रहेगा, अपनी भाषा पर गर्व करें, हिंदी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे निरंतर आगे बढ़ाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका।

0: श्रोताओं, अभी आप बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल जगत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिवजीपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:31 और 12 सेकंड हुए हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको उल्हास काशलकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवाने जा रहे हैं। इनके साथ तबले पर सुरेश तलवलकर, हारमोनियम पर विश्वनाथ कनहरे, तानपुरा पर सुनील पांडे और एसवी गवंदे ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए इनका गाया राग भैरव बिहार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए हेलो फरमाइश कार्यक्रम। कुछ गीत दिल के बहुत करीब होते हैं, कुछ नगमे किसी खास के नाम होते हैं, और जब फरमाइश हो अपने श्रोताओं की तो हर सुर में उनके एहसास होते हैं। नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जहां आपकी आवाज़ बनती है हमारी पहचान और आपकी पसंद बनती है आज के इस संगीतमय महफिल की शान।

फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में अब बस इंतजार है आपकी फरमाइशों का, तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ। नोट करें हमारा नंबर, नंबर है 232-540 और 232-558, 232-540 और 232-558। तो चलिए शुरू की इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश, हेलो जी, शायद इन श्रोता से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, पर कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं इस गीत के साथ। आइए सुनते हैं मुस्कान फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग मैम
0: जी। गुड मॉर्निंग, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे?
1: मैं मेरा नाम है कृपा सिंह, मैं गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ।
0: कृपा सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अरे मसाला बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और फोन लगने में बाकी एकदम तन मन एकदम स्वस्थ हो गया।
0: चलिए, तो आपकी इस खुशी को और दुगना करते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी आज गाना सुना दीजिए, गणपति बापा का तो त्योहार आ रहे
0: जी, जी बिल्कुल
1: है ना? तो इसी सिलसिले में कोई भी गाना सुना दो, और कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: जरूर।
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है भगवान सिंह परमार, और है प्रेम सिंह सिसोदिया, और है उसका कैशी सिंह यादव, और है उसका नाम सतीश, उसका नाम है राकेश जी है, और पूनम वर्मा जी है, और उसका नाम है त्रिपुरा से हमारा दादा भाई है आशुतोष देवनाथ बोधी है, संगीता बोधी, और जिसके जो सुन रहे हैं नेटवर्क के सब सारे दोस्तों का।
0: जी जी जी, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। चलिए इन सभी दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी, आपको भी।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी रामबाबू जी, बताइए क्या सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है इंतकाम, और गाने के बोले हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: हाँ जी दीदी,
0: तो मिलकर सुने ये गाना।
1: जी दीदी, बस कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: जी जल्दी से बता दीजिए।
1: जी दीदी, मित्र सुन रहे हैं केसरी सिंह राजपूत जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, मांगीलाल चंदेल जी और तनुश्री जी सुन रही हैं, और सारे सुनने वाले केंद्र के लिए और दीदी आपके लिए।
0: चलिए तो मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। नमस्कार, गजराज लोधी बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: जी गजराज जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, और काफी दिनों के बाद आज आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मैं पहले और कुछ सुनने लगा था, क्या
0: अच्छा।
1: कि आपके यहाँ से थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे प्रोग्राम आप देते हैं अच्छी बात है, मगर हम थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जिन लोगों के कॉल कट जाते हैं, आवाज नहीं आती, तो आप लोग नाम थोड़ा सा प्लीज बोल दिया करें कि ये उनका
0: अच्छा
1: कॉल था,
0: जी जी जरूर जरूर, इस बात
1: है ना।
0: पर
1: थोड़ा
0: हम
1: सा ये
0: जी
1: बताना
0: ध्यान
1: चाहते हैं।
0: देंगे।
1: और जो दूसरे में फोन जो दूसरे में आता है ना,
0: हाँ
1: तो उसके लिए भी कहना चाहते हैं, उसमें भी मतलब गिने चुने लोग आते रहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बदलाव करके नए नए लोगों को लाइए आप।
0: अच्छा, तो आपके इस बात पर हम ध्यान देंगे। और बताइए, आज आपके इस कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: जी प्रेम कैदी का गाना है जी, तो वो सुनना है मुझे।
0: अच्छा।
1: और हमारे साथ सुनने वाले कुछ मित्र भी हैं, मांगीलाल चंदेल जी, नरेश प्रजापति जी, केसरी सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, शिवा लॉर्ड जी, फूलचंद पाल जी, आशिक खान मंसूरी जी,
0: अच्छा
1: और अंजलि जाटव जी, और अंजना प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, और जयपाल भाई हैं, प्रेम कुमार जी हैं, और गंगाधर सावनकर जी हैं, और राकेश भाई है, और पूरन वर्मा जी है, पंचराम शर्मा जी, पुष्कर नाथ जी हैं, और जितने लोगों को मैं भूल रहा हूँ उन लोगों को भी ये गीत सुनवाना चाहता हूँ आपके लिए, और आशुतोष देवनाथ, और संगीता जी, और अविनाश जी,
0: जी चलिए तो।
1: और हमारे एक भाई और हैं भोपाल से, उनका नाम मैं भूल रहा था,
0: हाँ
1: आरिफ खान मंसूरी जी और कैलाश राजपूत जी।
0: अच्छा, तो चलिए सभी के साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत। प्रेम कैदी फिल्म का आपने फरमाइश किया है, इसका प्रियतमा ये गीत हम आपको
1: जी जी
0: सुनवा
1: जी
0: रहे हैं। सुनिएगा गजराज जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, पहले तो सुप्रभात आपको। और मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश श्री बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या कर रहे थे इस वक्त आप।
1: जी बस आकाशवाणी विजयपुरम की कार्यक्रम सुन रहा था और कोशिश कर रहा था, और कॉल लग गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा जानकर। अब जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत है जो सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में।
1: जी इस कार्यक्रम में देखिए, सारे जो हमारे श्रोता जो पसंद करते हैं पूरे सारे गीत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है कि गाना तो हम लोगों के लिए एक बहाना होता है, बस आप लोगों से बात करने के लिए हम लोग कॉल लगाते रहते हैं और अच्छा भी लगता है। और इस बहाने के बीच में जब थोड़ा सा गाना भी हम लोगों को सुनने को मिल जाता है तो अच्छा भी लगता है, दिल को
0: हाँ,
1: सुकून होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: चलिए
1: आज मुझे सुना जाएगा मूवी का नाम रहेगा दिल वाले, और गाने को बोले हैं सातों जन्म में तेरा, ऐसा कुछ गीत है कुमार सानू
0: हाँ
1: और अलका याग्निक की आवाज में।
0: जी, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा। जी ये बहुत ही

0: खूबसूरत गीत है, कुमार सानू जी की आवाज़ है और दिलवाले फिल्म का गीत है। चलिए मिलकर सुनते हैं ये
1: जी
0: गीत।
1: जी और कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं?
0: हाँ जरूर।
1: जी जी तो पहले तो हमारे अनुकुमार भट्टाचार्य जी हैं, प्रेमजी चक्रवर्ती जी हैं, जवाहरलाल बर्मन जी हैं, और आशुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, और गजराज जी हैं, और रामबाबू शर्मा जी हैं, केसर सिंह जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, तनुश्री जी हैं, और हसीना जी हैं, और मोहम्मद रफी मंसूरी जी हैं, और अभी जितने भी कॉलर जो छूट गए, प्रेम सिंह जी, सबके लिए गीत डेडिकेशन पर रहेगा, भगवान सिंह जी हैं, आपके लिए भी रहेगा।
0: चलिए तो हम सभी मिलकर सुने ये गीत।
1: जी जी बिल्कुल,
0: चलिए
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में पुनः आप सभी का एक बार से स्वागत है। चलिए एक हमारे श्रोता जो हैं वो लाइन पर हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। शायद किसी कारणवश इन श्रोता से जो है हमारा संपर्क जो है टूट चुका है, पर हम इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं इस गीत के साथ।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: जी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: हाँ जी, प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम सभी यहाँ बहुत ही अच्छे हैं, और आप सभी श्रोता से बात करके हमें भी अच्छा लगता है, और
1: जी
0: आप सभी की फरमाइश जो जब पूरी होती है और आपकी खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। बताइए, आज कौन सा गीत है जो सुनवाए इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: जी
1: जी
0: जी बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, उदित नारायण जी की आवाज़ में।
1: बिल्कुल।
0: तो मिलकर सुनिए ये गाना।
1: हाँ, दो तीन दोस्तों का नाम ले लूँ?
0: ज़रूर।
1: भगवान सिंह परमार, केसरी सिंह रातू, सुनील झा, रमेश टेलर, रानू गुप्ता, देवास से, और
0: जी
1: लोकेंद्र वर्मा जी।
0: चलिए, तो आपके इन सभी दोस्तों के साथ मिलकर आइए सुनते हैं ये गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश दीदी को राधे राधे।
0: जी। राधे राधे, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, और आप कैसे हो?
0: हम भी सब यहाँ अच्छे हैं। और त्योहारों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है, कल हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे। तो आपके वहाँ त्योहारों का कैसा मंजर है, कैसी
1: हमारे
0: रौनक
1: इधर
0: है?
1: दीदी बढ़िया रौनक है। कल तीजा भी है, तो तीजा का व्रत रहेंगी, कुछ लेडी

0: हैं और गणेश चतुर्थी भी आ गई है साथ में ही, पांचें आ गई हैं, फिर संतान साथ हैं, इस व्रत का कतार चलती रहेगी दीदी।
1: अच्छा, चलिए तो आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दीजिए आज इस प्रोग्राम में क्या सुनेंगे आप?
0: आज आप सुनवा दीजिएगा दीदी आजाद देश के गुलाम मूवी का सारे सिकवे के लिए भला से कहो
1: जी।
0: और हमारे मित्र हैं, सबसे पहले आप सुनेंगे दीदी, आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और
1: चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये जानकर।
0: और गजराज लोधी जी हैं, राम बाबू शर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी, मांगीलाल चंदेल जी, सुनील झा जी सुन रहे हैं, प्रेम सिंह जी का लगी चुका है, पूर्णिमा जी हैं विजयपुरम से, और धर्मवीर जी हैं दिल्ली से, राम नरेश जी हैं और रमेश प्रजापति जी हैं, अविनाश तेली जी का भी लग चुका है, अभी आशुतोष जी हैं, और जितने भी लाइव सुन रहे दीदी सबके लिए रहेगा।
1: चलिए तो हम सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए आपका भी शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया।

सुरों का ये सफर यूं ही चलता रहे, हर दिल में कोई प्यारा नगमा पलता रहे, फरमाइशों का ये सिलसिला बना रहे और संगीत से हर दिल जुड़ा रहे। तो दोस्तों, अब वक्त है इस सुरीली महफिल से विदा लेने का। अपनी फरमाइशों से इस महफिल को आपने जो प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे नई फरमाइशों और कुछ खूबसूरत नगमों के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: जनता जंक्शन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम जनता जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सीधे आप लोगों के बीच श्री विजयपुरम के गांधी पार्क में। चलिए बता दें आपको पार्क का माहौल। आसपास टहलते लोग हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और आज हम इन्हीं लोगों से करेंगे थोड़ी सी बातचीत, जानेंगे उनकी दिनचर्या, उनकी पसंद, उनके अनुभव और कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ी हों। तो चलिए देखते हैं आज गांधी पार्क में हमारी मुलाकात किन किन लोगों से होती है और उनकी बातें हमें कहां तक ले जाती है। श्रोताओं, मैं हूं श्रीविद्या और मेरे साथ है सीमा और प्रीति। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनता जंक्शन गांधी पार्क से।
1: हेलो सर।
2: हेलो
1: जी, आपका नाम बताएं।
2: मेरा नाम रोहित कुमार है
1: जी। आप यहां से तो नहीं लग रहे हो
2: जी। मैडम, मैं दिल्ली से आया हूं।
1: तो कब से हो यहां पे, घूमने के लिए आए हो या फिर यहां पे कुछ जॉब करते हो?
2: मैडम, मैं यहां जॉब करने के लिए आया हूं, बट मैं अभी यहां 4 मंथ से हूं।
1: ओके, तो कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि अभी आप गांधी पार्क अभी आए हो, तो गांधी पार्क में आपको क्या खास जो है जो आपको बहुत पसंद आया हो?
2: मैडम, गांधी पार्क ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बट यहां पर जो चीज़ें हैं वो जैसे कि यहाँ फिस थेरेपी फ्री की मिल सकती है आप लोगों को। आप कोई सभी, मैं तो अंडमान के लोगों से और टूरिस्ट से गाइड और सजेस्ट करता हूँ कि आइए यहाँ पर और फ्री की फिस थेरेपी आप ले सकते हैं।
1: अच्छा, तो आपने ली फिश थेरेपी?
2: जी मैडम, मैंने आज भी फिश थेरेपी ली और कल भी ली।
1: अच्छा, तो आपने जो मतलब दो दो बार आपने फिश थेरेपी ले ली, मतलब आपको इतना पसंद आया। तो और आप क्या बताना चाहेंगे गांधी पार्क के बारे में?
2: गांधी पार्क

0: बहुत ही बढ़िया और सुंदर बना हुआ है। यहाँ जो इसकी बांस की कलाकारी है, लकड़ी की कलाकारी है, वो आउटस्टैंडिंग है। और जिसने भी बनाया है, सरकार ने बनाया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
1: तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जान पा रहे हैं कि आप दिल्ली से हो, तो अंडमान लगभग कितना आपने घूमा?
0: मैं अभी अंडमान के सभी लगभग लगभग टूरिस्ट स्पॉट्स पर जा चुका हूँ। बाकी मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगी हैं, और यहाँ के पार्क बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े हैं। यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, शुद्ध साफ हवा है जो कि दिल्ली में नहीं मिलती है, और यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा हमारे दीप समूह के बारे में ऐसी बातें सुनकर। और सच में लोग क्योंकि हम एक मिनी इंडिया में रहते हैं, और सच में लोग काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोहित जी, बता दीजिएगा एक अपनी पसंद का गाना जो हम आपके लिए प्ले कर सकें।
0: मैडम कोई भी 90s का गाना हो और कुमार सानू सर का हो तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में।
1: चलिए रोहित जी, तो कुमार सानू साहब का गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। चलिए, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा।
0: हमें भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारे वाणी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।

0: हेलो मैम,
1: हाय।
0: आपका नाम?
1: सुमिति।
0: अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो मैम?
1: हम यहीं के रहने वाले हैं, अंडमान के।
0: प्लेस?
1: सिस्टी नगर।
0: सिस्टी नगर। जॉब करते हो या स्टूडेंट?
1: जॉब करती है।
0: अच्छा, आप रिविजिट कर रहे हो यहाँ पे कि?
1: फर्स्ट टाइम है मैडम।
0: अच्छा, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लगा आपको पार्क पहले से?
1: बहुत खूबसूरत है, डिफरेंट वैरायटी भी अलग अलग है।
0: अच्छा, आप अकेले आए हो या फैमिली के साथ?
1: फैमिली के साथ आई है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक गाना बता दीजिए आपका।
1: कोई भी गाना आप प्ले कर दीजिए, अरिजीत सिंह का या किसी का भी।

0: कहाँ रहती है आप?
1: हाँ जोगेश पार्क गाँव में।
0: जी, तो जोगेश पार्क के यहाँ पे रहती है आप, अभी गांधी पार्क में घूमने के लिए आइए। तो ये रेनोवेट होने के बाद में आपको गांधी पार्क कैसे लग रहा है?
1: अच्छा लगा।
0: अच्छा लग रहा है। और क्या इसमें नया जो ऐड हुआ है, क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो?
1: से ज़्यादा बोटिंग वोटिंग थोड़ा दिखता
0: हाँ,
1: है, वो
0: मछली।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: लगा।
0: तो
1: मछली बहुत सारा है।
0: अच्छा, मछली बहुत सारा अभी आया हुआ है। फिश थेरेपी ले सकते, जैसे कि हम देख पा रहे हैं वहाँ पे दो लड़कियाँ अभी बैठी हुई है, फिश थेरेपी ले रही है। आप ली?
1: नहीं गई थी देखने पर
0: हाँ,
1: अंदर नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं। तो आप किन के साथ में आई हुई हैं?
1: हस्बैंड के साथ।
0: तो चलिए बताइए सुनीता मैम कि आपकी पसंद का क्या गाना होगा जो हम आपके लिए प्ले करें।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: किशोर कुमार जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत फेमस गाना है, तो ज़रूर हम आपके लिए गीत प्ले करेंगे। तो बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हेलो सर,
1: गुड आफ्टरनून,
0: आपका नाम?
1: वेंकटेश्वरन।
0: अच्छा, आप स्टूडेंट हो या वर्क करते हो?
1: जॉब करते
0: कहाँ के रहने वाले हो?
1: हम भातुबस्ती।
0: भातुबस्ती। रीओपन जब से हुआ है ये पार्क, आप कितने बार आ चुके हो?
1: हम 2 बार आई है।
0: 2 बार। अच्छा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया है जो आपको बहुत पसंद है?
1: हाँ, बढ़िया बढ़िया प्लेस। अभी तो नया ओपन किया था।
0: एक पर्टिकुलर

0: जगह जो आपको बहुत पसंद आया हो यहाँ का?
1: इधर लोटस का वो पार्क बनाया था, ऊपर जगह था वो, अच्छा बढ़िया, एक फूल की तरफ।
0: अच्छा, कोई एक गाना बता दीजिए आपका पसंद का।
1: मैं लगता है अरिजीत सिंह के गाने का पसंद है।
2: बात

0: हेलो सर।
1: हाय हाय।
0: हाय मैम।
2: हेलो
0: सर जी, अपना नाम बता देंगे?
1: आई एम मनीष कुमार, एक्चुअली आई एम वर्किंग हियर एंड आई बिलोंग टू अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आई जस्ट केम फर्स्ट टाइम। आई हैव सीन हियर देयर आर गुड थिंग्स। आई कैन सी दिस ब्यूटीफुल लेक अराउंड इट। पीपल आर सिटिंग, दे आर एंजॉयिंग, दे आर हैविंग देयर क्वालिटी टाइम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन वन थिंग दैट इज रिलेटेड टू नेचर। लाइक आई हैव सीन पीपल आर हैविंग देयर बिलोंगिंगनेस टू हियर। दे हैव अ ब्यूटीफुल नेचर हियर। People, those who are sitting there, they are enjoying their moments, they are capturing the nature things. I've seen beautiful flowers here, and especially that Gandhi statue, which is just likely located in front of me only. So I'm enjoying it. I'll say ki this is a good time to spend here. Whenever you are feel alone, you can sit around, you can just be in touch of nature, and you can see beautiful birds, those who are literally enjoying here, and just you can enjoy your moments.
0: Thank you so much, sir. मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पार्क आपको कैसे लगा?
2: पार्क बहुत अच्छा है। अभी अंडमान में बहुत सारी जगह है देखने के लिए, लेकिन ये

0: हमारे घर के पास में है तो मुझे अभी तक का बेस्ट लगा ये।
1: तो इसके बाद में अभी आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगी, तो जैसा भी आप गांधी पार्क आई थी, तो आपको क्या बेस्ट इसमें से, जो मतलब अगर आप मुझे, अगर आपको बताना पड़े कौन सा बेस्ट लगा आपको पार्ट?
0: यहाँ पर मैंने ना फ्लावर के मतलब बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं,
1: जी
0: तो जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे, तो
1: ओके
0: मैंने
1: जी
0: फर्स्ट टाइम देखा है वो। और इधर कैक्टस भी है एक, और वो जापानी टेम्पल भी मैंने पहली बार देखा है कि ऐसे होते
1: जी
0: हैं।
1: जी चलिए, तो आपने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को आपने नोटिस किया है, तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मुझे बता दीजिए कि हम कौन सा वो जो गाना है हम आपके लिए प्ले कर सकते।
2: आई जस्ट रिकमेंड, आई जस्ट केम विद माई ब्यूटिफुल वाइफ, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू अपलोड अप लाइक मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम समथिंग।
1: ठीक है, चलिए आपका ऐसे टाइप का जो गीत होता है वो गीत हम आपके लिए प्ले करेंगे। चलिए, बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
3: जब

तो श्रोताओं, गांधी पार्क में आज की हमारी मुलाकातें थी यहीं तक। पार्क में घूमते फिरते मिले लोगों से बातचीत हुई, उनकी बातें सुनी, उनके अनुभव जाने और इस खूबसूरत माहौल में कुछ अच्छे पल भी बिताए। यही तो खासियत है जनता जंक्शन की। हम पहुंचते हैं आपके बीच और आपसे बातचीत के जरिए जुड़ते हैं। गांधी पार्क से आज के लिए बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर किसी नई जगह, कुछ नए लोगों और कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। गजलों के इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं चंदन दास और हरिहरन। आइए सुनते हैं इनकी गाई चंद गजलें। सबसे पहले आइए सुनते हैं चंदन दास को।

चंदन दास की आवाज़ में अभी आप मदन पाल का ये कलाम सुन रहे थे। और अब आखिर में लीजिए सुनिए हरिहरन की आवाज़ में चंद गज़लें।

0: अभी आप हरे हरन की आवाज़ में चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। गज़लों के कार्यक्रम के तहत आज आपने सुना चंदन दास और हरी हरन की आवाज़ों में चंद गज़लें। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం ప్రియమైన శ్రోతలకు నమస్కారం.

0: फजले। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం ప్రియమైన శ్రోతలకు నమస్కారం.

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए

0: इस इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
0: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
0: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाखस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। सुगम संगीत श्रोताओं, इस कार्यक्रम के तहत आज फनकार हैं भूपेंद्र सिंह, चित्रा, उस्ताद सुल्तान खां और जगजीत सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और चित्रा को। आसमानी रंग है आसमानी आँखों का।

अभी आप भूपेंद्र सिंह और चित्रा को सुन रहे थे, और अब अगली आवाज़ उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आखिर में आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह, चित्रा उस्ताद, सुल्तान खान और जगजीत सिंह को। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

दोपहर के 1:30 हुए हैं। आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से अब लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर संसार।

0: नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले एक सुविचार के साथ, जो कहता है कि लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे। जी हाँ, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कर भी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आधा रास्ता जो बचा है वो पार कर लीजिए और अपनी मंजिल को पा जाइए। तो चलिए, ये तो हुआ आज का सुविचार। तो आज आपको हम महात्मा गांधी जी का एक कथन सुनाते हैं। उन्होंने कहा था कि हृदय की कोई भाषा नहीं है। जी हाँ, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। और बहनों, इसी हृदय की भाषा को राजभाषा के रूप में सन 1949 में संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को बहुत विचार विमर्श के बाद हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। इस दिन के महत्व को याद रखने और बढ़ावा देने के लिए पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, और हिंदी की उत्पत्ति मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से हुई है। बहनों, इस दिन विद्यालयों में और कॉलेजों में प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को हिंदी लिखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और साथ ही संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये सभी आयोजन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वो हिंदी को अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करना सीखें। बहनों, इस दिवस के माध्यम से हिंदी मातृभाषा का सम्मान ही नहीं किया जाता, बल्कि दैनिक जीवन में उसकी आधिकारिक उपयोग करने का संदेश भी दिया जाता है। चलिए, इस दिवस को मनाते हुए अपनी कला को, अपनी भाषा को और भी निखारने का प्रयास करते हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: बहनों, चलिए अब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार गणेश चतुर्थी की बात करते हैं। इसे भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ इसकी समाप्ति होती है। इन 10 दिनों में गणपति के आगमन के लिए बहुत खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं और कई लोग अपने घरों में भी गणपति की स्थापना करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि वो उनके घर पे भोज पे आएं या फिर पंडाल में भोज पे आएं। सुबह शाम पूजा अर्चना भोग के साथ साथ भगवान गणपति का अतिथि संस्कार किया जाता है। आपको इस तरह से महसूस होता है जैसे कि आपके यहाँ अतिथि आए हैं जो आपके समक्ष रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं और जो आपके दुख को हरने की क्षमता रखते हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोग उनका दर्शन करने पहुँचते हैं और 9 दिन बाद तालाब महासागर में उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। जब उनका विसर्जन होता है तो उनके विसर्जन के साथ हम अपने कष्ट, अपने दुख, अपने अंदर की नकारात्मकता को भी विसर्जित कर देते हैं और एक नए जीवन को शुरू करते हैं। अब बहनों, यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी चीज़ों से अपनी प्रतिमा को बनाएं जिससे कि प्रकृति को विसर्जन के समय कोई नुकसान ना हो और हमारी धार्मिक आस्था का भी सम्मान बना रहे।

0: बहनों, चलिए अब जरा दूरदर्शन की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में एक परीक्षण के रूप में हुई थी। शुरुआती दौर में केवल 3 दिन आधे आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम दिखाए जाते थे और इसे शुरुआत में टेलीविजन इंडिया कहा जाता था। सन 1975 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया था और सन 1965 में दिल्ली में नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत की गई थी। बहनों, स्पोर्ट्स, न्यूज़, कृषि, शिक्षा और कई क्षेत्रीय चैनलों पर दूरदर्शन अपने कार्यक्रम चला रहा है और देश के कोने कोने तक डीटीएच के माध्यम से पहुंच रहा है। इसी के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के जरिए डीडी इंडिया 190 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट के माध्यम से पहुंच रहा है। फिलहाल 28 क्षेत्रीय और 7 राष्ट्रीय चैनल डीटीएच के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचकर अपनी जानकारी और मनोरंजन का विस्तार कर रहे हैं, चाहे मौसम की जानकारी हो या खेल की, और या ही शिक्षा की, और चाहे मनोरंजन, सभी आपके समक्ष एकदम पारदर्शी रूप में उपलब्ध है दूरदर्शन की वजह से। तो चलिए दूरदर्शन दिवस पर उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें जो दिन रात ज्ञान को हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: बहनों, चलिए आप थोड़ा सेहत की ओर चलते हैं और सेहत की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि

हर वर्ष 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन हृदय रोग के उपचार में नई तकनीकों और जीवन बचाने वाले तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बहनों, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हृदय रोग के इलाज की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़ी सर्जरी जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कैथेटर यानी कि एक पतली लचीली नली का उपयोग करके रक्त वाहिकाओं और दिल की बंद धमनियों का इलाज किया जाता है। अब आपने एंजियोप्लास्टी और स्टंट डालने के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये दोनों प्रक्रियाएं इसी क्षेत्र में आती हैं। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है और उनके मन से हृदय के इलाज से जुड़े डर को निकालना है। इसी दिन 1977 में डॉक्टर एंड्रियस ग्रंजिंग द्वारा पहली बार कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी और 2022 से उनके इस योगदान की याद में इस दिन को मनाया जाता है। वैसे तो आप अपने न्यूट्रिशन को ठीक करके, आप अपने खान पान को ठीक करके अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं, अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। तो चलिए, यहाँ पे अब दिल की बातें हो ही रही हैं तो थोड़ा दिल से जुड़ा एक प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं।

बहनों, हमारी पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है। अग्नि, हवा, पानी, भोजन और साथ ही बाहरी तत्वों से सुरक्षा। और यह सुरक्षा हमें ओजोन की परत से मिलती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी एक सुरक्षात्मक गैस की परत है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी कि UVB और UVC किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये हमें त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती है। जंगलों को यूवी किरणों से बचाकर यह वनस्पति और कृषि की भी सुरक्षा करती है। इसी के साथ साथ यह समुद्र और अन्य जलीय स्रोतों में मौजूद छोटे जीवों की रक्षा करती है। ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो पानी और हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों को तेजी से नष्ट करती है। और बहनों, ओजोन लेयर की इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हर वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और घटती हुई ओजोन लेयर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कदम जो हमें उठाना चाहिए वो है जितना ज़्यादा हो सके प्रदूषण को कम करें। हम प्रदूषण को अगर कम करेंगे तो ओजोन लेयर को नुकसान कम होगा। तो चलिए अपनी ओर से कुछ कार्य करते हैं और ओजोन लेयर को होने वाले नुकसानों से बचाते हैं।

तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब आप अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ

0: व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
0: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी

0: संतान परंपरा का स्वामी है।
1: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है और अब चलते चलते आपको बताते चलें मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों में कहीं कहीं पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि मौसम के कुछ एक दिनों में मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल।

इस समय दोपहर बाद के 2:31 हुए हैं। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

आप हैं 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र के साथ। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत लहरी।

कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं जुड़वा 2 फिल्म का ये गीत अमित मिश्रा की आवाज में। दानिश साबरी की बोल है, साजिद वाजिद का संगीत है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest Common Service Center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.
3: चीन में श्रीपदा और शाहिद माल्या की आवाजों में आइए सुनते हैं गुड्डू रंगीला फिल्म का ये गीत।

मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी जॉय बरुआ और शर्मिष्ठा चटर्जी की। इसी के साथ ही गीत लहरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम के साथ। दोपहर बाद के 3 बजे हैं, वक्त है प्रोग्राम एल्बम टाइम्स का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम के साथ। दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। पेश है हमारा अगला कार्यक्रम।

0: कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं, कुछ गीत यादों में बस जाते हैं, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो खामोश दिल की आवाज़ बन जाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, संगीत और एहसासों की इस खूबसूरत महफिल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त देवकी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। आज के सुरीली यात्रा में कुछ बेहद नर्म, मधुर और दिल को छू लेने वाले नगमे, ऐसे गीत जिनमें कभी इश्क की हल्की सी आहट है, कभी किसी अपने का इंतज़ार, कभी चांदनी सी नज़ाकत और कभी दिल की कोई अधूरी कहानी।
1: यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना,

इश्क भी कितना अजीब है, कभी किसी खास सस के मिलकर ज़िंदगी बदल देता है तो कभी उसकी यादों को ही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना देता है, और जब दिल में कोई अपना बस जाए तो उसकी मौजूदगी हर पल को एक मीठी सी धुन बना

कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनके साथ होने में नहीं बल्कि उस एहसास में होती है जो उनकी याद से भी दिल को भर देता है। कभी कोई इतना अपना लगने लगता है कि उसके बिना मौसम भी अधूरे लगते हैं, रातों की नींद भी अधूरी और दिल की कहानी भी। और जब प्यार की कहानी में कोई अपना इतना गहरा उतर जाए तो दिल बस यही कहता है। कुछ कहानियाँ पूरी होकर भी खूबसूरत होती हैं और कुछ अधूरी रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहती हैं।

कहानी चाहे पूरी हो या अधूरी, कुछ किरदार दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं और फिर उनकी यादों की चांदनी में बीते हुए पल भी नए नए से लगते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सभा की शुरुआत में सबसे पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मनेन ये रखरे हमांग इंगि रे तगा लमक तेनि मीडियम वेव 438.6 मीटर हे 684 किलोहर्ट्ज़ रमांग एनि आकाशवाणी श्री विजयपुरम एनि निकबारे प्रोग्राम तहांग।
2: नमस्ते, गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
3: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India.

हांगी तेरे आई ए दरो करे क्रिएटर्स राल तारीख आको निकुन बनाम ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यिप्ता आओ इन द स्टोरी रे नवा मैं वनाया हेक इंद्री गंगी पनाम नवा मैं वनाया हेक इंद्री गंगी कुन बनाम ही ततारो खर पनाम नी अंतंगामु तके तुरे तक ये हमुक तेरे आइलेक्टेन इंगम जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज मिने यंगी प्रोग्राम रमांग इंगम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तंगम प्रसार भारती इंद्रे नैनुन तह हमक युव तयी नैनु कंटेन यी तसा मिने तने हुरेन तिनरिगन ही आई आकुंगी कुनबनाम रे मिने कल्चर तरोही टूरिस्ट प्लेस मिने तरोल कहन ट्रेडिशन ही इंद्रे होल रे तप तचु ता स्टोरी यिप लोकल्स आकुंगी कुनबनाम ही तसाही आई आहनी कुबारी यिप ताहेंग इंद्रे नेमिन इनलाइन यी We up the hang sell it a Louis minutes video when you storing islands kun banam hi nenun min tan England up tamihoi tangam district level na 50,000 ngam inne the state level na net lakh angu ngam national level in re na 5 lakh angu asu apri tahak ka dai register lare tangamu el ngam waves app rang nyaku ngam my waves chuel ngam program ngai submit len up video re रू लंगकु किने कैन अन नहेक गम जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज नलक्त को इक फर्स्ट अगस्त वह सेल इप्त लुयाना अलांगो सेप्टेम्बर चिंगेत अब तल लंगकु रेता की रजिस्टर लरे

0: ngat in dai ay hang mine tale leng ta he tin ke ke tikok nyame holi ay ngam church of the epiphany i hang chu ha ye hang ta leng ang in ngai sindamu hek in roj ay hang rong it ka sat it a fan kai ro tala harap ngai yen
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं घड़ी।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं. ये टॉपिक अच्छा है पर सुनने में कुछ आपको तकलीफ भी हो सकता है क्योंकि नाजुक टॉपिक है पर आजकल चल रहा है समाज में. बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बच्चों पे क्या असर पड़ता है, डिवोर्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, आइए जानेंगे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. तलाक एक परिवार के लिए मुश्किल समय हो सकता है. न केवल माता पिता एक दूसरे से संबंध बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं बल्कि वे अपने बच्चों की परवरिश के नए तरीके भी सिखा रहे हैं. जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चों पर तलाक का असर अलग अलग हो सकता है. कुछ बच्चे तलाक के प्रति स्वाभाविक और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य बच्चे बदलाव के साथ संघर्ष कर सकते हैं. बच्चे लचीले होते हैं और सहायता के साथ तलाक के संक्रमण को संकट के बजाय समयोजना के रूप में अनुभव किया जा सकता है. चूंकि तलाक में बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग उम्र, इसीलिए बच्चों पर तलाक का प्रभाव भी अलग अलग होता है. सभी स्वभाव के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर तलाक का सामना करता है. इसे ध्यान में रखते हुए यह तलाक के बच्चों पर पड़ने वाले कुछ सबसे आम प्रभाव बताए गए हैं जिनके प्रबंधन में माता पिता की मदद कर सकता है. तलाक परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुश्किल होता है. बच्चों के लिए परिवार की बदलती गतिशीलता, इसको समझने की कोशिश करना उन्हें विचलित और भ्रमित कर सकता है. उनके दैनिक ध्यानों में ये व्यवधान बच्चों पर तलाक के प्रभाव में से एक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में देखा जा सकता है. दैट मीन्स इट विल अफेक्ट देयर एकेडमिक्स. बच्चे जितने अधिक विचलित होंगे उतने ही अधिक संभावना है कि वो अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. शोध से पता चला है कि तलाक बच्चों को सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है. जिन बच्चों का परिवार तलाक से गुजर रहा है उन्हें दूसरों से घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका सामाजिक संपर्क कम हो सकता है. तलाक के कारण बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बार बार बदलाव के साथ तालमेल

बिठाना सिखाई पड़ती है। नए परिवार की गतिशीली, नया घर या रहने की स्थिति, स्कूल, दोस्त और बहुत कुछ, इन सभी का असर हो सकता है। तलाक एक परिवार के लिए कई तरह की भावनाओं को सामने ला सकता है और इसमें शामिल बच्चे भी इससे अलग नहीं है। नुकसान, गुस्सा, भ्रम, चिंता और कई अन्य भावनाएं सभी इस संक्रमण से आ सकती है। तलाक बच्चों के अनुभूति और भावनात्मक रूप से संवेदनाशील महसूस कर सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बच्चों को अपनी भावनाओं को बेहतर निकालने के लिए एक आउटलेट की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे बात कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात सुन सके। बच्चे तलाक के प्रभावों को अपनी भावनाओं को संसाधित करने के तरीके महसूस कर सकते हैं। कुछ मामले में जहां बच्चे अभिभूत महसूस करते हैं और तलाक के दौरान महसूस होने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया करना नहीं जानते, वे क्रोधित या चिड़चिड़ा हो सकते हैं। उनका गुस्सा कई तरह के कथित कारणों पर निदर्शित हो सकता है। तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रहे बच्चे अपने माता पिता, खुद पर, अपने दोस्तों और दूसरों पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जबकि कई बच्चों के लिए ये गुस्सा कई हफ्तों के बाद खत्म हो जाता है। अगर ये बना रहा तो ये जानना जरूरी है कि ये बच्चों पर तलाक का एक स्थायी प्रभाव हो सकता है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उनके परिवार में तलाक क्यों हो रहा है। वे कारणों की तलाश करेंगे या सोचकर कि क्या उनके माता पिता अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते या उन्होंने कुछ गलत किया है। अपराध बोध की ये भावनाएं बच्चों पर तलाक का एक बहुत ही सामान्य प्रभाव है, लेकिन ये कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। अपराध बोध दबाव बढ़ाता है, अवसाद, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। इससे अपनी भूमिका को समझने के लिए बच्चों को संदर्भ और परामर्श प्रदान करना अपराध बोध की इन भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। जब बच्चे ऐसे कठिन समय से गुजरते हैं तो अनसुलझे संघर्ष भविष्य में अप्रत्याशित जोखिम पैदा कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि पिछले 20 सालों में तलाक का सामना करने वाले बच्चों में अपराध में भाग लेने, विनाशकारी व्यवहार के जरिए विद्रोह करने की संभावनाएं ज्यादा होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि उन्हें धूम्रपान की आदत लग गई है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन मुद्दों से निपटना शारीरिक समस्याओं सहित कई तरह के परेशानियों का कारण बन सकता है। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चे, वे बीमारी की संभावना अधिक हो सकती है, जो कई कारकों को और कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सोने में कठिनाई भी शामिल है। इसके अलावा अवसाद के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य की हानि और बिगड़ते स्वास्थ्य के लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चों को अपने रिश्ते में होने पर तलाक की संभावना अधिक होती है। कुछ शोध संकेत देते हैं कि तलाक की ये प्रवृत्ति गैर तलाकशुदा परिवारों से आने वाले बच्चों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो सकता है। फिर भी, जबकि ये तलाक के बच्चों पर होने वाले कुछ संभावित प्रभाव है, ये किसी भी तरह से पूर्ण या पत्थर पर लिखे हुए नहीं है। अधिक से अधिक परिवार समझ रहे हैं कि तलाक उनके बच्चों के साथ साथ उनके लिए भी कितना तनावपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सुन चुके हैं कि क्या होता है, बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जो भी है, अपने फैमिली को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प तो हमेशा ही सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी निर्णय आप लेते हैं, इसका असर सीधा अपने बच्चों पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉल और मैसेजेस ऑन 09515227039, 09515227039 और राइट टू अस एट फीडबैक

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे आप सुन सकते हैं दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में की रिकॉर्डिंग। धरती के गीत कार्यक्रम के तहत कश्मीरी लोकगीत पेश किए जाएंगे संध्या 6:30 पर। 6:45 पर देशगान। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचना से अवगत कराया जाएगा संध्या 7:15 पर। आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या रात 9 बजे न्यूज एट 9 9:15 पर स्पॉटलाइट 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह का सितार वादन आप सुन सकते हैं जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा पावर टेलर का उपयोगिता। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा प्रेम शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 361वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर सुनिए।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान का, जो मीडियम वेव और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ दोनों में प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सलमा आगा, मोहम्मद अजीज, तलत अजीज और मनहर उदास का गायन। 9:00 का समय रहेगा फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमजद अली खां का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन आप सुन सकते हैं। गीत गाता चल फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल दिन में 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1371वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी कल दिन में 11:00। 11:30 पर आप सुन सकते हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत अनुराधा पुडवाल के गाए गीत। 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के संग। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए सुगम संगीत, जिसमें कल फनकार होंगे फरीदा खानम। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5:00 आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। शाम 6:00 का समय रहेगा कृषि जगत कार्यक्रम का। रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला आप सुन सकते हैं 6:30 पर। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवा दोस्तों का कार्यक्रम होगा युवाणी। रात 8:00 चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुई है। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

श्रोताओं, ये गणेश आरती आप सुन रहे हैं वास्तव द रियलिटी फिल्म से। स्वर दिया है रविंद्र सेठ और साथियों ने, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, अगली पेशकश विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में बिच्छू फिल्म का ये गीत। गीत रचना समीर की है और संगीत आनंदराज आनंद का।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, जो हमने ली है छुपा रुस्तम फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।

नमस्ते, गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास, बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

0: এর সঙ্গে শেষ হলো আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রচারিত হলো আকাশবাণীর শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি কার্তিক। ভালো থাকবেন সকলে, ভালো রাখবেন সকলকে। নমস্কার।
1: শ্রোতাও, আবি আপ বাংলা কার্যক্রম শুন রহে থে। মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলোহার্টজ। ইয়ে আকাশবাণী কা শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র হ্যায়। ইস সময় সন্ধ্যা কে 6 বজে হ্যায়। আব সুনতে হ্যায় দিল্লি সে প্রসারিত সুর্খিও মে কার্যক্রম কি রেকর্ডিং। সুর্খিও মে
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉ हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉ पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।

0: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद
0: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
1: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है,
0: जी,
1: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था, जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
0: जी
1: क्योंकि आपको याद है, जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन

0: क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
1: जी
0: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे, परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस 2 दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से
1: जी
0: उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये 3 देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें 3 देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस हैं, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था,
1: जी
0: जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था
1: जी
0: जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए,
1: जी
0: निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में,
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हारकुस, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस
1: जी
2: ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए

0: एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, एक ऐसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
1: जी
0: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
0: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियो पोलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कहीं, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अभी समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
3: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी
3: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे ईरान का, तो यकीनन क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न हैं,
1: बिल्कुल
3: हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूँ परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ।
1: जी
3: तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
3: 40% है इसकी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं,
1: बिल्कुल
3: रूस पहले था, अभी UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये

0: एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं, और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटर ही रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है, वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है, और मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देश देशों पर
1: बिल्कुल
3: पड़ रहा है, जो सबसे जो जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है। और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, यूएन हो, WTO हो, WHO, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे। और बड़ी शक्तियां, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स के एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो
1: बिल्कुल
3: भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल
1: जी।
3: साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।

0: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है और ये कितना जरूरी हो गया है?
2: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस सिक्योरिटी शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है। और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में
1: जी।
2: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपना जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही,
2: उतनी आवाज नहीं मिल रही, और उसको जरूर मिलना चाहिए
1: जी। एक जी। और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
0: सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
3: ये मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक

0: ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, और
1: जी
0: ग्लोबल कॉमर्स जिस तरह से डिस्टर्ब होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, और जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आप आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध में युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और
1: जी
0: अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं, भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कांटेक्ट्स नहीं रहे, और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे, और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स
1: जी
3: के समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल तियानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में, और आज की मुलाकात में देखता हूँ, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के
1: जी
3: द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में,
1: जी
3: 2020 में, तो गलवान हुआ।
1: बिल्कुल
3: तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए,
1: जी
3: और वहां पर शांति रहनी चाहिए।

0: ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ जी अनुभा
1: जी, आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
2: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
3: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी, लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्षपंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:32 हुई है। अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीरी लोकगीत। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कश्मीरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम में कश्मीरी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

एक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहायकों के पैनल तैयार करने हेतु चयन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आकाशवाणी के ड्यूटी रूम से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2026। प्रसारण सहायक के रूप में चयन भविष्य में किसी भी नियमित रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। ये थी आवश्यक सूचना।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब सेहतमंद होगी हर नारी तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी।
2: एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जाँच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी

0: के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: बचत पहले छोड़ के सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से द्वीप समूह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ट्राइबल एक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच में मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज बताया है कि देश में लगभग 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पीपीई प्रदान की गई है। इसके साथ ही कामकाज के सुरक्षित माहौल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 76,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। सरकार स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कल्याण और सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कर्मचारियों के विवरण की रूपरेखा तैयार करने, सुरक्षा उपकरण देने, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि 983 स्वच्छता कर्मचारी

कार्यों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है ताकि वे 364 वाहनों की खरीद कर सके। यह सहायता मशीनीकृत स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देने के साथ साथ कर्मचारियों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सुनिश्चित करती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचार में आगे प्रमुख है, राष्ट्रीय लोक अदालत और ट्राइबल एक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से श्री विजयपुरम, मायाबंदर, डिगलीपुर और कैम्बलबे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कैम्बलबे में कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से हुई। श्री विजयपुरम में बैंक रिकवरी, BSNL रिकवरी, NI एक्ट, आपराधिक तथा मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। श्री विजयपुरम में 3, मायाबंदर में 1 और डिगलीपुर में 1 पीठ गठित की गई थी। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्राट राय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष शुभ्रा बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में किया। मायाबंदर और डिगलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवित्र सेन के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ट्राइबल एक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है। ट्राइबल एक्स मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भारत की जनजातीय ज्ञान परंपराओं, संस्कृति, भाषाओं, कला, वस्त्र, संग्रहालय, विज्ञान और टिकाऊ आजीविका से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। UGC से मान्यता प्राप्त एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 5 स्ट्रीम में प्रवेश दिया जा रहा है। इनमें ट्राइबल लैंग्वेज, संथाली, म्यूजोलॉजी एवं ट्राइबल म्यूजियम मैनेजमेंट, ट्राइबल कल्चर एंड आर्ट्स, सस्टेनेबल ट्राइबल कल्चर तथा ट्राइबल टेक्सटाइल शामिल है। इसके अलावा 50 से अधिक निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स भी सभी इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है। पाठ्यक्रम UGC के तहत संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी से संबद्ध है। प्रत्येक PG डिप्लोमा कार्यक्रम की फीस 7,500 रुपये निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन डिप्लोमा कार्यक्रमों में विशेष छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने और ट्राइबैक्स के माध्यम से जनजातीय ज्ञान परंपराओं को सीखने की अपील की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण एवं विस्तृत जानकारी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक ट्राइबैक्स पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9933210933 पर संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में प्रसारण सहायक के पैनल में शामिल करने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अधिकतम आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार 16 सितम्बर को 10:00 बजे लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से द्वीप समूह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ट्राइबैक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

सबसे पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा कल 14 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। अगले दिन 15 तारीख को दोपहर 2 बजे ये जलयान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 16 तारीख को सवेरे 7 बजे एमवी रानीचंगा श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। 17 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी 18 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। अगले दिन 19 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 19 तारीख को ही रात 8 बजे एमवी कालीघाट श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। इस जलयान की वापसी होगी 20 तारीख को दोपहर 2 बजे। एमवी कैंबलवे 15 तारीख को दिन में 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। 18 तारीख को भी रात 9 बजे यही जलयान श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और अगले दिन 19 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान यानी एमवी कैंबलवे की श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए अगली यात्रा 20 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। रात 9 बजे यह जलयान लिटिल अंडमान से छूटेगा और श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी भारत सीमा 17 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट 16 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रवाना होगा। अगले दिन 17 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से छूटेगा और लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 20 तारीख को सवेरे 7 बजे एमवी सेंटिनल श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रवाना होगा। 21 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी कालीघाट 24 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल और नानकौरी होते हुए कैंबलवे जाएगा। 27 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलवे से छूटेगा और इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम वापसी करेगा। 15 तारीख को सवेरे 9 बजे जलयान नालंदा श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबलवे के लिए रवाना होगा। 17 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलवे से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। यही जलयान 22 तारीख

को सवेरे 9 बजे भी श्री विजयपुरम से नानकौली होते हुए कैंबल भी जाएगा। इस जलयान की वापसी होगी 24 तारीख को सवेरे 8 बजे। 29 तारीख को सवेरे 9 बजे भी जलयान नालंदा श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल भी जाएगा। 1 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबल भी से छूटेगा और नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है साथी फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और प्रिया भट्टाचार्य की।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, जिसे आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में तैयार देव कोहली ने लिखा है। स्वर है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के। इस गीत को हमने लिया है आक्रोश फिल्म से।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325402325588। हमारा स्टडी कोड है 031192। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी जी नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम शिवा लोहट, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैं आपका। नहीं
0: जी नमस्कार शिवा जी, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत बढ़िया हूँ मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके सारे घर परिवार को और सभी सुनने वालों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मैम।
0: जी हम सबकी तरफ से भी आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम मूवी का नाम है शिकारी
0: जी,
1: और इसमें एक उदित नारायण जी की आवाज में गाना है, जितना भी कर लो प्यार हमको कम लगेगा।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, और ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: हमारे परम मित्र रहेंगे जो हमारे दिल के करीब हैं, पूरन वर्मा जी
0: जी,
1: पुरुषोत्तम कुमार जी, अमल जी, विमल जी और रमेश प्रजापति जी और रमेश पात्रे जी, अविनाश जी और कितने भी लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, सभी के डेडिकेट रहेगा और स्पेशली आपके लिए।
0: जी धन्यवाद। तो चलिए शिवाजी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: प्रेम से क्या बोल रहा हूँ
0: जी।
1: छोड़ा नागदा जिला उज्जैन।
0: नमस्कार प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात और भी अच्छा लग रहा
0: जी,
1: है।
0: हमें
1: आप
0: खुशी हुई
1: बताइए
0: कि
1: आपसे।
0: आपने हमें कॉल किया। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है तुमसे प्यार है
0: जी,
1: और गाने के तेरे इश्क में पागल हो गया तेरा जी।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है। और ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: भगवान सिंह, केसरी सिंह राजपूत, श्रीपाल गोयल, लोकेंद्र वर्मा, रमेश और हमारे अनु गुप्ता, इन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा और आपके लिए भी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रेम जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: जी मैम, हम दिमाजी असम दुनाई मेसा की सपुरे से बिमोल बसुंधर बात कर रहा हूँ मैम।
1: नमस्कार बिमल जी, कैसे हैं आप?
0: जी मैम ठीक है, अच्छा हूँ मैम।
1: जी, हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी मैम, हम इतना दिन के बाद आज पहली बार कॉल मिला है शाम को, बहुत अच्छा लगा है। आज मेरे को सुना दीजिए, आज शाम को मैम दिल जो लेकर जो भी एक गाना सुना दीजिए मैम।
1: जी, ज़रूर। और ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी मैम, ये गाना दिल के रहेगा सबसे पहले आपको, और हम लोग का फ्रेंड है ओमल भुस्तरी, फाइकन मुंडा, रोमेश पात्रो, दिवासिस हजरिका, और है हम लोग का रमेश प्रजापति, राकेश, पूरन वर्मा, प्रेम सिंह सिसोदिया, भगवान सिंह परमार, शिवलोहर भैया, पुरुषोत्तम भैया, और जितना सुन रहा है सबको दिल के रहेगा मैम।
1: जी, तो चलिए विमल जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
2: न जाने कब से फिरता हूँ
3: क्या
2: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
3: मैं क्यों लिखूंगी?
2: तो ये सारे कार्ड्स,
3: वो तो
2: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
3: नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
2: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूँ?

0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: जी मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग। आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर बमोरी जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी नरेश जी, बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी ये उदित नारायण और अलका जी की आवाज़ में कोई भी आप गीत सुनाइए। और बहुत दिनों के बाद लगा है मैम
0: जी। जी जी, हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो आज के दिन ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप हैं और आपकी पूरी टीम है
0: जी, धन्यवाद।
1: हमारे बड़े भाई मांगीलाल चंदेल जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, सेवा लोड जी हैं और ब्रजमोहन लोधी जी हैं, और हमारे भाई राहुल जी हैं, अन्नु पांडे जी हैं गोंडा
0: जी
1: से, और जितने भी साथी कार्यक्रम को सुन रहे हैं ना, गोविंद वैष्णव जी, कैलाश राजपूत जी, कल्याण सिंह जी और हरि नारायण जी, गोविंद वैष्णव जी, सभी श्रोता है, योगी राज मस्के जी,
0: जी जी
1: संजीव मक्कड़ जी, पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से,
0: जी
1: और तो बहुत सारे दोस्त
0: जी। तो चलिए नरेश जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: दोस्तों, अगले हफ्ते आप भी हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325402325558। हमारा स्टडी कोड है 0312। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभरात्रि।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

अगली पेशकश विजय रत्नम के संगीत निर्देशन में तैयार योगेश की लिखी रचना, स्वर दिया सुरेश वाडकर और साथियों ने, फिल्म है काल चक्र।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अगली पेशकश कन्हैया फिल्म से। स्वर दिया मुकेश ने, बोल लिखी है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में जान की कसम फिल्म का गीत।

श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, इसे संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ें अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की है। इस गीत को हमने लिया है सूर्या फिल्म से।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। सबसे पहले सुनते हैं रोजगार समाचार।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूम 20 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम andaman.pmb@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों को वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा अथवा अन्य विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट के vacancy-announcement सेक्शन में उपलब्ध है। वैकेंसी नोटिस से प्राप्त किया जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

भारत सरकार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग से समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार के में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपयुक्त विषयों पर स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, A1 सफेद जंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेजे। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व से आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। ये थे रोजगार समाचार।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय

0: सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन

0: सुमित सिंह पद्म।
1: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी 3 पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडिट कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ

0: तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
1: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma. Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top-grade artist of Akashwani and an acclaimed sitarist, carrying the generations-old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
0: आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार सुमित लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
1: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
0: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वह अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
1: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi, and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation, and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's Reference Panel of Artists.
0: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
1: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Raag Rageshwari, wherein alap is followed by jod alap, jod jhala, and then vilambit gat in teen taal, madhyalay gat in mat taal, and drut gat is in teen taal.

0: यह था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग देस। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम विल नाउ प्रेजेंट राग देस। आलाप इज फॉलोड बाय मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, संवत 1948 की भाद्रपद माह की 23वीं तिथि तदनुसार 14 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

इस समय सवेरे की 5:30 और 36 सेकंड हुए हैं। सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। इस दिन मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गजानंद गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की मूर्ति स्थापना करके कई भक्त 10 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन इनकी प्रतिमा को घर में स्थापित कर जो लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं उनके तमाम संकट गणेश जी हर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर